0: मैं जाऊं।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
0: ओके।
2: चिराग सेठ, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ ले जाओ।
2: थैंक यू।

जिससे पाप न हो वो धर्म है। पाप मुक्ति ये दुख मुक्ति का मूल मंत्र है। दुख का एकमेव कारण है पाप, और इस पाप को जीवन की क्रिया करते हुए पाप से एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है, क्योंकि बेसिक छह क्रियाएं, उन छह क्रियाओं में पाप नहीं हुआ तो जीवन में पाप होता नहीं। चलना, खड़े रहना, बैठना, भोजन करना, बोलना और सोना, ये छह क्रियाएं हमारे जीवन की मूलभूत क्रियाएं, और इस क्रिया में भी हमने पाप से मुक्त करना जीना सीख लिया तो बाकी सब काम हो गया है। इसलिए प्रभु ने कहा जयम चरे, ऐसा चलो अलंबने न काले न मग्गे न जैना, जो कारण परिशुद्धम, चलने का अलंबन शुद्ध होना चाहिए, चलने का समय जैसा समय उसका ध्यान रखना है। समय का मीनिंग चौघड़िया नहीं, समय का केवल इतना ही मीनिंग है, उजाला है या अंधेरा है। काले दिवसों तो उजाले में चलना, अंधेरे में नहीं चलना है। और अंधेरे में चलना हो तो पूंज करके चलना, बिना पूंजे नहीं चलना, उजाले में देख करके चलना। आलंबन पहले क्या है, आलंबन किसके सहारे में चलता हूं, और जिसके सहारे हम चलते हैं उससे बहुत कुछ पता चलता है कि हम कैसे रहेंगे। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन का सहारा लिया, परिणाम आपको पता है, दुर्योधन ने शकुनी का सहारा लिया, परिणाम आपको पता है, कई कई ने मंथरा का सहारा लिया, परिणाम आपके सामने है, अर्जुन ने श्री कृष्ण का सहारा लिया, आचार्य मानतुंग ने भगवान ऋषभदेव का सहारा लिया, सुदर्शन ने भगवान महावीर का सहारा लिया। आप कौन है इससे भी महत्वपूर्ण है कि आपने किसका सहारा लिया। हम सबने जिन शासन का सहारा लिया इसलिए हम यहां आए, यदि जिन शासन का सहारा नहीं होता तो हम यहां नहीं होते। तो अलंबन मीन्स सहारा है, सीढ़ी, मैं सीढ़ी किसकी उपयोग कर रहा हूं। तो परमात्मा ने तीन आलंबन बताए, ज्ञान, दर्शन और चरित्र। ज्ञान, दर्शन।

क्लियर नहीं हो और वो कॉन्फिडेंस से गाड़ी चलाए, एक्सीडेंट पक्का होगा। और विजन क्लियर है तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। बहुत लोग कहते हैं मेरे साहब कॉन्फिडेंस नहीं है। सच्चाई ये है कि विजन क्लियर नहीं, ज्ञान नहीं। ज्ञान के पीछे कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। कल मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि श्रद्धा से चलना, श्रद्धा से बोलना, श्रद्धा से खाना, श्रद्धा से बैठना, श्रद्धा से खड़े रहना, श्रद्धा से उठना, श्रद्धा से सोना है। किया प्रैक्टिकल? हेलो, प्रैक्टिकल किया क्या? जवाब नहीं आ रहा आपसे। प्रयास याद रखना, पक्का याद रखना है। यदि परफेक्ट बनना हो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि मिस परफेक्ट रहना हो तो लापरवाही कर सकते हो। पूर्वो काउं अंतगढ़ सूत्र आप लोग हर साल सुनते हो और उसमें यही जाता है कि परमात्मा ने जो चिक्रियाएं रख बताई उनको आगे रख करके वो चलते थे। वो बहुत शार्प है, मॉनिटर पर शार्प है। उनको आगे रख करके चलते थे और जिन्होंने जिन्होंने उसको आगे रख करके यात्रा करी वे मोक्ष में पहुंच गए। इसको आगे रखना है, आप साइड में रखते इसको। जब आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि जब याद आया तब किया, इसका मतलब वो सामने नहीं था। जो सामने नहीं होता उसको याद करना पड़ता है। इसको आगे रखो। यदि दुख मुक्ति चाहिए, पाप मुक्ति चाहिए तो परमात्मा ने पूजा पाठ नहीं बताया। बिल्कुल सिंपल सी बात बताई और ये सारी हम लोग कर सकते हैं। आवश्यकता किसकी है? केवल तय करने की। यस, मैं करूंगा एक कमिटमेंट, मैं नहीं करता हूं तो पनिशमेंट। आप इच्छा करेणम का पाठ बोलते हैं, तसोत्तरी का पाठ बोलते हैं और तसोत्तरी का पाठ बोल के आप समय लेते हो, उसमें शब्द क्या जाता है? उत्तरी करेणम, पायचित करेणम, मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। यदि लाइफ में आपको सफल होना है, सक्सेस होना है, सपनों को सच करना है, किसी भी फील्ड के सपनों को सच करना है, उसके लिए जयमचरी का पाठ है। आप किस क्षेत्र में है ये आपकी धारणा है कि साधुओं के लिए? नहीं, परमात्मा ने सबके लिए कहा है। कमिटमेंट, मैं ऐसा ही चलूंगा, मैं ऐसा ही बोलूंगा, मैं ऐसा ही भोजन करूंगा, मैं ऐसा ही बैठूंगा, मैं ऐसा ही सोऊंगा। ये कमिटमेंट होनी चाहिए स्वयं के साथ। यदि कमिटमेंट है तो इंप्लीमेंट हो जाएगा और कमिटमेंट नहीं है तो इंप्लीमेंट कभी नहीं होगा। ये आपकी भाषा है। मैं सब जिस अवसर होशिल उसे देखो ना, समझ लेना। ये सारे अवसरवादी राजनीतिज्ञ हैं।
ये राजनेता है,

दिस अवसर, और इतना शब्द समझ में नहीं आ रहा हो तो अगला शब्द सुन लेना, जो अवसर की बात करता है वे गिरगिट होते हैं। गिरगिट का कोई धर्म नहीं होता है, गिरगिट बनकर के जीवोगे तो जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचोगे। अर्जुन माली को परिवर्तन करने के लिए सुदर्शन लगता है, और सुदर्शन ने ये नहीं कहा कि अभी अवसर नहीं प्रभु का दर्शन करने का है। उस समय प्रभु दर्शन का अवसर था? अवसर था? नहीं था। अवसर होता तो पूरी राजगढ़ लौट जाती। जो अवसर की बात करते हैं वे सिद्धि से चूक जाते हैं। अवसर होता नहीं है, आप हो तो अवसर है, आपके कमिटमेंट है तो अवसर है, और आपके कमिटमेंट नहीं है तो अवसर नहीं है। अंकुश कालसा आवाज नहीं, बल्कि बोल कालसर का आवाज नहीं, आवाज थोड़ा सा चेक करोगे, अवसर नहीं। यदि मैंने ऐसा बोला आपके साथ कि अवसर हो तो बखान दूंगा, मैंने अवसर उछीला तो मंगल पार दूंगा, शार्पनों को करूर बहु बेच दे मतलब, अवसर उशीला तो मंगल पाठ दूला, अवसर उशीला दर्शन दूला, अवसर उशीला तो पुनः होला, चलेगा है? और बहू ने कह दिया अवसर होगा तो रसोई बनाऊंगे, चलेगा? कमिटमेंट, जो कमिटमेंट करते हैं उनकी सारी शक्ति ऊर्ध्व गति में जाती है। जो कमिटमेंट नहीं करते हैं उनकी ऊर्जा तीन गतियों में जाती है, नरक गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति में। जो कमिटमेंट करते हैं उनकी केवल दो ही गति है, देव गति और सिद्ध गति। व्हाट डू यू वांट? आपकी क्या तमन्ना है? ऊर्ध्व गति में जाना है, तिरछी गति में जाना है, अधोगति में जाना है? कमिटमेंट, जब तक आप कमिटमेंट नहीं करोगे इंप्लीमेंट कभी नहीं हो पाएगा। और कमिटमेंट करने के बाद इंप्लीमेंट के लिए और एक शब्द परमात्मा ने दिया, यदि मेरी कमिटमेंट में कहीं ब्रेक होता है तो मैं प्रायश्चित लूंगा। सोचिए आप, जितने भी महापुरुषों का जीवन आपने सुना है, सफलता के शिखर पर पहुंचे जो, उन्होंने एक्सक्यूज दिया क्या? जिस समय तुम एक्सक्यूज की भाषा में बोलते हो उस समय तुम चीटिंग नहीं करते हो, स्वयं को फेल करते हो। एक भी वो व्यक्ति सक्सेस नहीं हो पाया जिसके पास एक्सक्यूज है, और एक भी वो व्यक्ति फेल नहीं हुआ जिसके पास एक्सक्यूज नहीं है। जिसके पास एक्सक्यूज नहीं है वो फेल हो ही नहीं सकता है, और जिसके पास एक्सक्यूज है वो कभी सक्सेस हो नहीं सकता है। इसलिए आग्रह करूंगा कि अपने माइंड को, अपने इमोशन को इस एक्सक्यूज के वायरस से बाहर निकालो,
और चाहे तुम तुम्हारी जिंदगी चेक कर लो, जहां जहां तुमने एक्सक्यूज के दरवाजे खुले रखे वहां वहां तुम्हें पछताना पड़ा है। चेक कर लो, दूसरे की नहीं स्वयं की जिंदगी चेक कर लो। जहां जहां एक्सक्यूज रहे वहां पछताना पड़ा है, जहां एक्सक्यूज नहीं रहा वहां प्राउड फील होता है। एक्सक्यूज का मीनिंग है रावण को अपहरण करने के लिए मौका देना है। यदि सीता ने एक्सक्यूज नहीं लिया होता तो रावण क्या कर सकता था? हेलो, यदि लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाने की उसकी कमिटमेंट थी और उस कमिटमेंट में उसने एक्सक्यूज नहीं लिया होता तो रावण क्या कर सकता था? कुछ नहीं कर सकता था। जिस समय हम एक्सक्यूज के दरवाजे खुले रखते हैं उस समय अपनी जिंदगी में रावण आने के दरवाजे खुले रखते हैं। आई रिक्वेस्ट यू, छोटी बातें बता रहा हूं मैं आपको, कोई मैंने आपको प्राणायाम करने के लिए नहीं कहा है, कोई मैंने आपको स्तोत्र पाठ याद करने के लिए नहीं कहा है। जो आप कर रहे हो वो कैसे करना, मैंने आपको चलने के लिए नहीं कहा, लेकिन चलो तो भगवान महावीर कहते वैसे चलो। मैंने आपको बैठने के भी नहीं कहा, लेकिन बैठो तो ऐसा बैठो। मैंने भोजन करने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन भोजन करो तो ऐसा करो। सोने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन सोना हो तो ऐसा सो। मैंने करने के लिए कुछ नहीं कहा, परमात्मा ने तुम्हें करने के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन जो तुम करते हो उसका तरीका चेंज करो। जब तक तुम्हारा तरीका चेंज नहीं होगा जिंदगी बदलेगी नहीं। तरीके चेंज करने के नहीं करने एक बार बात बोल दो, और तरीके चेंज नहीं करने होंगे तो मैं सब्जेक्ट चेंज कर देता हूं। हेलो, तरीके चेंज करने हो तो मैं विषय को कंटिन्यू करता हूं, सब्जेक्ट को कंटिन्यू करता हूं, और तुम्हें केवल सुनना ही हो तो मैं फिर स्टोरियां सुनाना शुरू कर देता हूं। यस, तरीका चेंज करते हो तो मैं तरीके की बात करूंगा। हाँ, कैसे आएगा? तरीका चेंज करना पड़ेगा। बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, सफल होने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, अलग तरीके से करते हैं। सक्सेसफुल पर्सन डू एवरीथिंग डिफरेंटली, कोई नया काम नहीं करते हो पर नए तरीके से करते हैं। आप पुराने तरीके से चलोगे तो पुरानी ही मंजिल पर पहुंचोगे। आपको ये तरीका चेंज करना होगा। पुढ़चा आवाज माझ्याकडे येतो का? आपको तरीका चेंज करना होगा। मैंने मेरा तरीका चेंज कर दिया। चतुर्मास के पहले ही हमने हमारे साधु साधु की मीटिंग ली, और मीटिंग लेकर के हमने पॉलिसी तय कर ली, इवेंट के सारे कार्यक्रम सबके पास, तीर्थेश जी, महासती जी, इवेंट के कार्यक्रम, रक्षाबंधन उनका कार्यक्रम, शिविर मेरे कार्यक्रम,
मैंने चेंज कर दिया, मैं उधर दिमाग लगाता नहीं हूं और मेरे इसमें उनको दिमाग लगाने देता नहीं हूं। क्लियर पॉलिसी, आपको भी क्लियर होना होगा। आपको केवल बखान सुनना है तो मैं बखान सुना दूं, और आपको चेंज होना है तो मैं तरीके बताऊं। यस, और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके, भगवान महावीर के तरीके कोई पहाड़ उठाने के नहीं है, ना आपको भस्त्रिका करने के लिए कह रहा हूं, ना कपाल भाति करने के लिए कह रहा हूं, ना सूर्य नमस्कार करने के लिए कहा। इतना सा आपको छोटा सा सूत्र दिया, घर में प्रवेश करने के पहले डायरेक्ट जाना नहीं, दरवाजे पर एक मिनट के लिए खड़े रहना है। इतना सा कहा, थाली पर बैठे तुरंत शुरू नहीं करना है, एक मिनट। मैं किस लिए भोजन कर रहा हूं? सामने से सवाल आया तुरंत जवाब नहीं देना। विषम जे खनम एकम, एक्शन के लिए पॉज, पॉज लेकर के बोलना सीखो। जैसे पॉज लेकर के बोलोगे तुम्हारा उत्तर गलत हो ही नहीं सकता है। उसके सूत्र है, अलंबने अलंबंती ने ज्ञान दर्शन और चरित्र। जानते हो तो बोलना, नहीं जानते हो तो बोलना नहीं। बेखबर होकर के खबर नहीं देनी, ये बेखबर वाले जो खबर देते हैं वे कल्याण नहीं करते। खबर ज्ञान, मैं जा रहा हूं किस लिए जा रहा हूं, किसे जा रहा हूं, उजाले में चलना। बिना जाने कदम उठाना नहीं, श्रद्धा संशय से कदम उठाना नहीं। गाड़ी मिलेगा कि नहीं मिला, मैं जाऊं तो है लेकिन काम हुआ कि नहीं हुआ। ज्ञाता धर्म कथा में बहुत सुंदर प्रसंग जाता है, द्रौपदी का अपहरण हुआ, जैन महाभारत की बात है, और अपहरण भी हुआ तो ठेठ भरत क्षेत्र के बाहर अवर कंका देवता ने अपहरण किया। देवता ने उस राजा को कहा था कि तू द्रौपदी के पीछे मत लग, कुछ भी हो जाएगा तो द्रौपदी तुझे स्वीकार है नहीं करेगी। पर राजा ने कहा तू आया है ना, जो कहता हूं कर। बोले मैं लाता हूं, लेकर गया खोज, और आग किसने लगाई थी? नारद ने। किसने लगाई थी? हेलो हेलो हेलो पचकान लो, मैं कहीं पर भी नारद नहीं बनूंगा। मिला नारद को, नारद को क्या मिला? ये लगवा लगवी करने को मिलता क्या है? और इस समय तो नारद की बाढ़ आई हुई है, बराबर है कि पवन? बाढ़ आई हुई, बाढ़। और बाढ़ तरीका क्या रहता पता है उनको?
बाजू नहीं लेनो, कान में बात करनी, कहीं नहीं बोले। वो दूसरे पूछे कहीं बोले रे, अरे कहीं नहीं सामने, नहीं तो कहीं तो भी गड़बड़े, कहीं तो भी तूने बोली हो। बोला बस थोड़ी सी धीमे से बोली हो गए कल्याण। इतने से छोटी सी टेक्निक से अभय देव ने, अभय कुमार ने वज्जी को पराजित कर दिया था। सिंपल टेक्निक अपनाई थी, एक नारद को भेज दिया वहां पर और सभासद को, एक एक सभासद को अलग लेकर बात करता। वो पूछता नहीं, डाउट कैसे क्रिएट होते हैं। नारद इस दुनिया में नहीं हो तो महाभारत हो ही नहीं। तो नारद के कारण से अपहरण हुआ और खबर भी नारद से भी नहीं। और पांडव खोजते, श्री कृष्ण और खोजते खोजते लवण समुद्र पार करके पहुंच गए। उस राजा ने सोचा था कि चाहे जो हो जाए लवण समुद्र पार करके कोई आ ही नहीं सकता है। मैं बार बार कहता हूं आपको, मैंने आज सुबह के शिविर में, 5 से 6 के शिविर में 3 पचकान दिए। मैं ये कर नहीं सकता हूं कभी नहीं बोलना, तू ये कर नहीं सकता है कभी नहीं बोलना, ऐसा हो नहीं सकता है कभी नहीं बोलना। मैं करूंगा नहीं ओके, तू करेगा नहीं ओके, पर कर नहीं सकता ऐसा नहीं बोलना। अब राजा इस भ्रम में था कि लवण समुद्र पार करके कौन आ सकता है, कोई हो ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है। कभी मत कहना। रावण को भी लगा था कोई आ ही कैसे सकता है, लेकिन हनुमान जी पहुंच गए। थाने भी बांटते तो प्रवीण ऋषि किसो आ सके, आ गया ना? थाने भी बांटते तो ऋषि आठा इकट्ठे हुए गए, हो गए। और उनकी आठाया हुई जिन्होंने एक उपास जिंदगी में नहीं किया है, एक आसन नहीं किया है। क्यों? उन्होंने नहीं कर सकू, कर सकू। जिसने कर सकू का सूत्र अपनाया वो कर गया, जिसे नहीं कर सके ये बैठा है तुम्हारे सामने, इसको पूछो 2015 में कितनी माला गिनी रात में, तेला में के उपास मेरे को बेला में इतनी माला गिनी, पूछो मत। वो बोल रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं, संतरे की तैयारी। उसके पहले कितनी उसने मन ही मन मेरे लिए क्या क्या बोला वो जाने। अभी आराम से कर रहा है, 13 की होली हो गई उपास, 14 की होली हो गई सुपवास, 15वीं होली शुरू। कर सकता है। मुझे बहुत बार लोगों ने पूछा आपने उनको परमिशन कैसे दी, कि जब उन्होंने कहा कि मैं आड़ासन नहीं करूंगा, मैं आता अपना लूंगा, तो आपने परमिशन कैसे दी। मेरा सिंपल सूत्र है, तुम कर सकते हो करो, मैं क्यों को तू नहीं कर सकता है। किसी का आसमान छीनने का मुझे अधिकार नहीं है,
और जो ये कहते हैं कि तू कर नहीं सकता है, वे आसमान छीनते हैं और जेल देते हैं। और जो ये कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं, वे आसमान में उड़ ही नहीं सकते हैं, वे फिर जेल में चले जाते हैं। कभी मत बोलो, कभी मत सोचो। और पहुंच गए, और पहुंचने के बाद श्री कृष्ण ने, पांडवों ने वो अमरकंका के राजा के पास मैसेज भेजा कि तूने द्रौपदी का अपहरण कराया है, तू लौटा दे, तुझे क्षमा कर देंगे। वो अपने आकड़ में थे, किसमें हो? हेलो, वो अपने आकड़ में, उसको लगा है मेरे घर में है, हे कितने हैं? 5 जने, एक जना, 6 जने। मेरे पास सेना है, मेरे राज्य में, मेरे भूमि में है, इनको तो मैं ऐसा चुटकी से कर दूंगा। और उसने जवाब भेजा, द्रौपदी का अपहरण लौटाने के लिए नहीं किया है, नहीं लौटाऊंगा। तो वापस समाचार गया, या तो द्रौपदी को लौटा या युद्ध के लिए तैयार हो जा। बोले आई एम रेडी फॉर युद्ध। छोटे महाराज सामने भी यहां आने के पहले कईयों के पास मैसेज दिए थे कि शांति से रह जा। नहीं बोले हम, बोले हूं। बोले युद्ध करेंगे, और युद्ध करने के लिए पूरी सेना के साथ युद्ध भूमि पर पहुंचा। श्री कृष्ण ने पांडव से पूछा, तुम लड़ोगे कि तुम देखोगे? क्या पूछा? तुम लड़ोगे कि तुम देखोगे? मैं आपको पूछता हूं, परिश्रम पर्व के लिए तुम काम करोगे कि देखोगे? हेलो, कैसे करना, ध्यान में रखना। पांडवों ने कहा नहीं है, लड़ेंगे हम, आप देखो। श्री कृष्ण ने कहा ओके, तुम लड़ो, मैं देखता हूं। और पांचों पांडव लड़ने के लिए गए और मुंह लटका करके वापस आ गए, हार करके आ गए। अर्जुन, भीम, धर्मराज, नकुल और सहदेव, महाभारत में किसी के सामने नहीं हारने वाला अर्जुन वहां हार गए। वो अमरकंक वाला राजा शंखनाद करके लौट गए, यही श्री कृष्ण के पास मुंह उतारे हुए। और श्री कृष्ण ने उनसे सिंपल बात पूछी, डिटेल में नहीं जाते, सिंपल पूछा, तुमने युद्ध शुरू करते समय क्या घोषणा करी थी, क्या लक्ष्य बनाया था, क्या ध्येय बनाया था? और धर्मराज ने कहा, हमने घोषणा करी, या तो हम जीतेंगे या तो जीतेगा। क्या घोषणा करी? या तो हम जीतेंगे, तू जीतेगा। और श्री कृष्ण ने कहा, उसी समय तुमने अपने हार का रास्ता खोल दिया, उसी समय तुम्हारी पराजय तय हो गई। बोले आप तुम देखो, मैं लड़ता। और श्री कृष्ण गए, अपना शंख बजाए, भेरी बजाई। उस भेरी की आवाज सुनकर के पूरा दीप गुंजित हो गया। उस राजा ने देखा, ये अकेला आया, 5 को और ये, वो लौटा वापस। और लौटा तो श्री कृष्ण अपने शाडु का आवाज क्या बोले, आई एम विनर, मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। बाजी पलट गई, बाजी पलट गई। वो भागने लगा, मैदान छोड़कर के, मैदान छोड़कर भागने लगा वो।

नरसिंह अवतार कर लिया, वहां पर अपने वैक्रीय शरीर को फोड़ दिया, दर्दनाक, और वो गया दौड़ते दौड़ते द्रौपदी के पास। बोले क्या करूं, क्या कहती द्रौपदी, ध्यान से सुनना। द्रौपदी उसको एक ही कहती है, क्यों द्रौपदी को सती कहते हैं, कि जिसकी अंदर की उदारता कभी कम नहीं होती है, जिसकी क्षमा अनकंडीशनल होती है, जिसका मैत्री भाव अनकंडीशनल होता है, उसने अपहरण किया था, कैद में रखा था, बुरी नजर थी उसकी, और जब वो शरण में आया तो द्रौपदी उसको कहती है, मैंने तुझे पहले ही कहा था, तुझे सुना नहीं, अब समझ जा, अभी तू वे उत्तम पुरुष है, श्री कृष्ण उत्तम पुरुष है, तो अभी भी गिल्ले कपड़े पहन करके हाथ जोड़ करके उनके शरण में चले जा, वो तुझे माफ कर देंगे। उसने सुना, वो शरण में गया, और ऐसे व्यक्ति को भी उन्होंने माफ कर दिया। ये पुरुषन परिवार है, वे उत्तम पुरुष होते हैं जो शरण में आने वाले को माफ करते हैं, वे उत्तम पुरुष होते हैं जो शरण में नहीं आने वाले को दंडित करते हैं, वे देवाधिदेव होते हैं जो सबको क्षमा करते हैं। मूलवात थी कि मन में डाउट रख करके युद्ध शुरू किया है, कि हम जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। तुमने हारने की संभावना खुली रखी, हार गए। जिसने हारने की संभावना खुली नहीं रखी, वे जीत गए। ये श्रद्धा, ये आस्था कि मैं, बोलो बोलो, मैं करूंगा ही, यस, मैं तरीके चेंज नहीं, हो सके तो करूंगा, नहीं हो सके तो कभी नहीं कर पाऊंगे। अरे इस डबल माइंड में ऑप्शन में अर्जुन हार गया, तुम्हारी तो बात ही क्या है, बी सिंगल माइंड। गाड़ी मिली ला के नहीं मिली ला, मिली ला, काम हुई ला के नहीं बोला, हुई ला, मैं काम करूंगा, मैं पास हूं ला के नहीं बोला, नहीं हुई ला पीछे, वे हर जाते हैं जिनके मन में डबल होता है, वे जीत जाते हैं जो सिंगल माइंडेड होते हैं। चलना तो कैसे, सिंगल माइंड चल रहा, श्रद्धा का लंबन, अपने ही कैरेक्टर का लंबन, किसका लंबन, अपने पांव का लंबन, नाने न दंसने न चरने न यो, अपने ही कदमों से मंजिल ना अपनी। चदारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलीपन्नतोदम मंगलम, चदारी लघुतम, अरिहंता लघुतम, सिद्धा लघुतम, साहू लघुतम, केवलीपन्नतोदम लघुतम, चत्तारी शरणं भवज्जामि, अरिहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहू शरणं भवज्जामि, केवलीपन्नतम धम्मं शरणं भवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरण, दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई, जो भय प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदवे। आज के 22 उपास, 22 वाले आए क्या?

0: 22 पास ठीक है। उगे सुरे 40 बत्तम बच का मेति वियम प्यारम समासनम खैमन साइमन सहस्ता गरेनम महत्ता गरेनम सो समय अवत्या गरेन ओसरे ओसरे ओसरे 22 उपास के पचकान लेने वाले को महास्कमन के शिखर की ओर कदम बढ़ाने वाले को मैं भी महास्कमन के भी आगे बढ़ने वाले को जी आज के 14 उपास आज के 14 उपास उपास के पचकान लेने वाले को
1: हेलो
0: मांस खमन के लड्डू के भाव रखने वाले को
1: धन्यवाद। सौ सुरेखा जी जयंतीलाल जी गांधी सौ मीना जी राजेंद्र जी मुत्ता सौ कल्पना जी संतोष जी दुगड श्री अनिल जी धारीवाल आज 14 उपास के इन्होंने पचकान लिए हैं। 22 उपास में यहाँ पर सौ मनीषा जी संजय जी कटारिया राजेंद्र जी दुगड सीमा जी महावीर जी बेदमुत्ता इन्होंने 22 उपास के पचकान लिए हैं।
0: अंकुश सेटिंग कर बराबर भर का आज के अगले पचकान की ओर 13, 12, 11, 10, 9 आज के 8 उपास
1: डॉक्टर सागर जी श्रीनिवास बियानी 8 उपास के पचकाने हैं।
0: बोलो मैं बोलो ये डॉक्टर बियानी गुरुदेव के जन्मोत्सव के समय में जो तपस्या का मेला लगा था उसी समय इसने मुझे आकर के पूछा ये क्या होता है ये कैसे होता है। मुझे पंडाल में पूछा था मैंने कहा उधर बैठकर बात करता हूं यहां कोई बात होगी नहीं इधर आए बात करी और सेकंड डे से उपास शुरू किया।
1: जय जय
0: नमो हॉस्पिटल में हो ना खुद को हॉस्पिटल क्या नाम से क्लिनिक बिहानी क्लिनिक और आज नेवर बिफोर उनके जिंदगी के लिए और पता नहीं आज का दिन नेवर बिफोर का है। शिवगांव में भाग्यश्री गांधी अशोक जी गांधी की बेटी बहुत हिम्मतवान है लेकिन दिव्यांग है बराबर चल नहीं सकती है लेकिन हौसले बुलंद है। उसको थायराइड है शारीरिक अनुकूलता नहीं है उसके बावजूद ऑनलाइन प्रवचन सुनते सुनते और तपोत्सव का नजारा देख करके उसने भी इनके जैसी अठाई शुरू करी।
1: जय जय
0: और आज उसकी अठाई के पचकान है शिवगांव में वह कोई चौमासा नहीं है लेकिन फिर भी ऑनलाइन उसने अठाई करी है। हौसले बुलंद हो तो रास्ते नहीं राजमार्ग बनते हैं और हौसले पस्त हो जाए तो फिर तो क्या होता है वो अलग से आपको कहने की जरूरत नहीं है। तो आज इन दोनों के लिए बहुत गहराई से बोलेंगे बहुत गहराई से बोलेंगे नेवर बिफोर अटैक करने वाले को
1: धन्यवाद
0: नेवर बिफोर एक्सपीरियंस करने वाले को
1: धन्यवाद।
0: उगेश्वरी 18 बत्तम बज गति वियम व्यवहारम स्वासनम खैमन सैमन सहस्ता गरेन महत्ता गरेन शुभ समय मत्या गरेन ओसरे ओसरे ओसरे
1: डॉक्टर
0: अनिल भो
1: हाँ जी
0: डॉक्टर का तो करना ही आपको सम्मान लेकिन मेरी भावना रहेगी कि भाग्यश्री के पास भी ये अठाई के गिफ्ट पहुंचनी चाहिए।
1: जी जी गुरुदेव। डॉक्टर सागर जी श्रीनिवास जी बियानी, इनका संघ की ओर से स्वागत सम्मान करने मैं संघ के चातुर्मास समिति के महामंत्री राजेंद्र जी मुत्था इनको आमंत्रित करता हूँ।
0: फिलहाल

देखो दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की।